So good morning to everyone. Good morning to Karan. Good morning to Bannu. Good morning to Lucky Marwat. Good morning to Anarth and South Waziristan. Good morning to DA Hunter. Good morning to Miwali. Good morning to Kohat. Good morning to Lachi. Good morning to Hungutal. Good morning to Badajinar. Good morning to Varagzai. And good morning to Pakistan. This is me, Subhadubar Tariq. And now you are listening to Morning Abruga. प्रोग्राम में तमाम सुनने वालों को जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे रही है, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहा है, तमाम सुनते कानों को इस मॉर्निंग प्रोग्राम में वेलकम जो यानो बखेर रहले एलन वसेलन मरहबा हबीबी आहे आहे अबली करिए जो मुझे कहते हैं सुबह दोपहर तारीख और इस वक्त आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम

So today is the 19th July, the day is a Sunday, and the year is 2026. So, सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज के न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से टॉप स्टोरीज शामिल हैं. सो बिल्कुल सबसे पहले चलते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब. शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज के न्यूज़पेपर के टॉप स्टोरीज.

पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया, आवाम पर मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं, शफी जान। हाइबर पख्तूनख्वा के तर्जमान शफी जान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत ने अपनी मुआशी नाकामियों का बोझ आवाम पर डाल दिया है, आवाम पर मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अमरीकी फौज का ओदन में ईरानी मिसाइल हमलों में अपने दो फौजियों की हलाकत और मुतादद के जख्मी होने का एतराफ कर लिया। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ओदन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में अपने दो फौजियों की हलाकत और मुतादद के जख्मी होने का एतराफ किया है।

जिन्हें सुनी थी आज की खबर के टॉप स्टोरीज। चलते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग की जानिब। सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ये पैट्रियोटिक सॉन्ग, पश्तो मिली नगमा।

सो चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब, एंजॉय कर लेते हैं इस सॉन्ग। और ये सॉन्ग मैं काफी टाइम बाद प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ, साहर अली बंगा की वॉइस में है। तो बिल्कुल एंजॉय कर लेते हैं ये सॉन्ग, साहर अली बंगा की वॉइस में है।

0: सो गाइस सॉन्ग एंजॉय कर रहे हैं साहिल बगा की वॉइस में है सो गाइज आपको ये भी बताता चलो के इंसान की जिंदगी आजमाइश मुश्किलात और चैलेंजेस से भरी हुई है। कभी हालात हमारे हक में होते हैं और कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं। कभी खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो कभी गम और परेशानियां हमें घेर लेती हैं। ऐसे मौके पर इंसान के किरदार और ईमान का असल इम्तिहान होता है। जो शख्स इन हालात में सब्र, हौसले और अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ साबित कदम रहता है वो आखिरकार कामयाबी, सुकून और खुशियों से हमकिनार होता है। इसलिए कहा जाता है कि सब्र का बल हमेशा मीठा होता है। गाइज सबर सिर्फ खामोशी से तकलीफ बर्दाश्त करने का नाम नहीं बल्कि सबर का मतलब यह है कि इंसान मुश्किल हालात में घबराए नहीं, अल्लाह ताला से बदगुमान ना हो, अपनी जुबान को शिकवे और नाशुक्री से महफूज रखे और अपनी कोशिश जारी रखे। सबर इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है और इसे हर आजमाइश का मुकाबला करने की हिम्मत देता है।
1: बैठूं कोई बात ना आए तू समझ न पाए।
0: गाइज रोजमर्रा जिंदगी में हम ये भी देखते हैं कि एक तालिबेलम कई साल मेहनत करता है, रातों की नींद कुर्बान करता है, तब जाकर कामयाबी हासिल करता है। एक इंसान जमीन में बीज बोता है, फिर सबर के साथ उसकी देखभाल करता है, ठीक है, तब कहीं जाकर फसल तैयार होती है। एक माँ अपने बच्चों की परवरिश में बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त करती है, लेकिन जब वही बच्चे कामयाब होते हैं तो उसकी तमाम मुशक्कत खुशी में बदल जाती है। ये तमाम मिसालें हमें ये बताती हैं कि हर अच्छी चीज वक्त, मेहनत और सबर मांगती है। गाइज आज के दौर में बहुत से लोग चाहते हैं कि हर कामयाबी फौरन मिल जाए। अगर उन्हें चंद दिनों या चंद महीनों में मतलूबा नतीजे ना मिले तो मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुदरत का निजाम यह है कि बड़ी कामयाबियां वक्त और सबर के बाद ही हासिल होती हैं। जल्दबाजी अक्सर इंसान को नुकसान पहुंचाती है जबकि सबर उसे दुरुस्त फैसले करने और अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद देता है।

गाइस, सब्र का मतलब ये हरगिज नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। इस्लाम हमें मेहनत करने, जायज असबाब इख्तियार करने और फिर नताज को अल्लाह ताला पर छोड़ देने की तालीम देता है। जो शख्स मुसलसल मेहनत करता है और सब्र के साथ अपने मकसद पर कायम रहता है, अल्लाह ताला उसकी कोशिशों को जाया नहीं करता। गाइस, अगर जिंदगी में बीमारी आए तो सब्र करें, माली तंगी आए तो सब्र करें, और अगर नाकामी मिले तो उसे अपनी जिंदगी का अख्तिताम न समझे। हो सकता है कि आज की आजमाइश कल आपकी सबसे बड़ी कामयाबी का सबब बन जाए। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए वही फैसला फरमाता है जिसमें इनकी भलाई होती है, अगरचे इंसान इस भलाई को फौर न समझ सके।

एनडीएमए ने 19 से 24 जुलाई तक आजाद कश्मीर मेनलैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी किया है। मुसलसल बारिशों के बायस नीलम वैली, मुजफ्फराबाद और बाग में मिट्टी के तोदे गिरने के हादसा है, जबकि कोटली और मीरपुर और बिम्बर के पहाड़ी इलाकों में भी दरमियानी दर्जे के खतरात मौजूद हैं।

सो बिल्कुल ये थी मौसम की सूरत हाल। टाइम कम है, आपके मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं, लेकिन आपके मैसेजेस शामिल करने से पहले चलते एक और सॉन्ग की जानिब। प्रोग्राम में शामिल करते एक और सॉन्ग, सो एंजॉय कर लेते हैं।

सो बिल्कुल फर्स्ट मैसेज ऑफ द शो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम सुपर डुपर तारिक, हाउ आर यू? यकीन जाने बहुत मिस करती थी मॉर्निंग शो, वेलकम टू ऑल फ्रेंड, मैं ग्रेट मलिका। चले थैंक यू सो मच ग्रेट मलिका, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फर्स्ट मैसेज। थैंक यू सो मच ग्रेट मलिका फॉर ज्वाइनिंग।

और जी नेक्स्ट योर गॉड कम विदाउट यू आई डोंट एक्सेप्ट गॉड व्हेन आई डोंट मेट एंड सी यू मैं इनोसेंट ग्रे मलिक। चले थैंक यू सो मच ग्रे मलिक, आपने ज्वाइन किया बहुत शुक्रिया। और जी नेक्स्ट मैसेज इट्स मी तरहान सलाम एंड गुड गुड मॉर्निंग तरखान, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग तरखान, हाउ आर यू? शो अमेजिंग है। अच्छा जी चले थैंक यू सो मच तरहान, बहुत शुक्रिया, विश यू बेस्ट ऑफ लक। चले थैंक यू सो मच तरहान, आपने ज्वाइन किया। नेक्स्ट मैसेज ऑफ द शो इट्स मी यतीम लड़की सलाम, माय कैंडी की तरह स्वीट भाई, आप आपके शो में रिकॉर्ड करती हूं, अभी तक मैंने 355 शोज रिकॉर्ड किए हैं, ओ माय गॉड। तारिक भाई मैं आपकी 2021 से लिसनर हूं। अच्छा जी चले थैंक यू सो मच यतीम लड़की, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और 355 शोज आपने रिकॉर्ड किए हैं, वाह जी वाह क्या बात है। अगेन यतीम लड़की तारिक भाई स्पेशल सलाम टू यू रज भाई एंड ऑल स्टाफ, सलाम टू तारा रोशी आयजा मनाहिल उजाला नादिया राबिया ग्रेड मलिका एंड ऑल सिस्टर। चले थैंक यू सो मच सबको, आपके सलाम पहुंच गए, बहुत शुक्रिया यतीम लड़की आपने ज्वाइन किया, लेकिन आप बिल्कुल भी यतीम नहीं है, हम आपके साथ हैं। और अच्छा जी यतीम लड़की ने फिर से मैसेज किया है, कह रही है कि तारिक भाई मेरा न माँ है न बाप और न कोई भाई है, हम चार सिस्टर और एक भतीजा है, तारिक भाई ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है? जब आपका कोई ना हो तो ये दुनिया वाले सब कुछ छीन लेते हैं, यहाँ तक कि सर का छत भी छीन लेते हैं। तारिक भाई ऑल लिसनर से स्पेशल दुआ की रिक्वेस्ट है, अल्लाह आपको और ऑल लिसनर को खुश रखे, आमीन।

थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। नेक्स्ट सलाम एंड गुड मॉर्निंग तारिक भाई, मनाहिल ने मैसेज किया है। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मनाहिल, आपको भी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग। कभी कभी मैं इतना तेज हो जाता हूँ कि मो भी स्लिप हो जाती है। चले थैंक यू सो मच मनाहिल, आपने ज्वाइन किया। और जी नेक्स्ट सलाम, कैसे हो सुपर भाई, वेलकम टू द शो फॉर यू। तेरे बिना महफिल अधूरी है भाई, तेरी खुशी में मेरी खुशी है भाई, मैं आपकी छोटी सिस्टर आमना हटक। चले थैंक यू सो मच आमना हटक, बहुत शुक्रिया। लो या खजशी

0: प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, इसलिए दिल बहुत उदास हैं. सो प्लीज प्ले वेरी सैड सॉन्ग इन योर फेवरेट. आई मिस यू तारिक भाई एंड राज भाई, वेरी वेरी मिस यू. चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया तीम लड़की. और लास्ट में एक सॉन्ग मैं प्ले करता हूँ जी. नेक्स्ट मैसेज आमना घटक ने मैसेज किया है और केडी के सवाल का जवाब है ना ना नेवर. थैंक यू. अच्छा, ये सवाल मैंने पिछले प्रोग्राम में भी पूछा था, लेकिन उस प्रोग्राम में भी किसी ने सवाल का सही जवाब नहीं दिया और आज के प्रोग्राम में भी पता नहीं किसी ने भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया. क्यों, हमारे लिसनर नालायक हो चुके हैं? और जी नेक्स्ट बाइज करकना यमा सेमा गुल. अच्छा जी, और दाहो दे ना ना ना नेवर. चले थैंक यू सो मच सेमा गुल, आपने मैसेज किया करक से लेकिन आपका जवाब भी गलत है. चले चलते एक और सॉन्ग की जानेब और टाइम भी कम है, जस्ट 3 मिनट बाकी हैं. अच्छा जी, ग्रेट मलिक ने जवाब दिया है और केजी के सवाल का जवाब है ना ना ने और गलत.
1: ख्वाब है दिल सुकून में है मगर
0: तारहान ने मैसेज किया है फिर से केजी के सवाल का जवाब है ना ना गलत.

और स्वीटी तक सवाल का जवाब दिया है, ना ना ना आपका जवाब भी गलत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Next, it's me, Sadhava from Karak. Hello and hi. Congratulated brother, how are you? I like your special, I like your show. Special salam to Lali Zimal and Roshihan. Okay, good life. Chale, thank you so much, Sadhava. Ji, next, welcome my sweet sister, Yatim Ladki. And haan, please, ye name change karo. Main to aapko... ग्रेट मोन के नाम से सलाम करूंगी। आप मेरे प्यारे बहन हैं और तारा आंटी वेलकम है ग्रेट मलिका। चले थैंक यू ग्रेट मलिका। नेक्स्ट इट्स मी सफा फ्रॉम करक गैन। प्लीज शेयर दिस डायमंड वर्ड्स। और केरी के कुदरत इतने परफेक्ट हैं कि आपके हर अमाल का बदला जरूर लेता है। ओके, खुश रहो। चले थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अल्फाज। थैंक यू सो मच, अच्छा अल्फाज शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इट्स मी लाडली जिमल फ्रॉम करक सलाम। ग्रेट भाई कैसे हो, इज वेरी अमेजिंग। सलाम टू ऑल लेसर। ओके, गुड लाइफ। चले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भी। सो टाइम खत्म हो चुका है, मिलते हैं आज दोबारा 12 से 1 बजे तक प्रोग्राम में। ठीक है, दोपहर 12 से 1 बजे तक प्रोग्राम में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। किसी ने भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया और मैं भी तब तक जवाब नहीं बताऊंगा जब तक कोई मुझे इस सवाल का जवाब ना दे। ठीक है, सो मिलते हैं 12 से 1 बजे तक प्रोग्राम में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।

0: तड़ाई माजे में जी दार तो ये जी पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जनाती से तारखना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर उपस्थित थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ाले हो चे कराना में कुरता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टूल कुर वाला ना फसूल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब वो दर तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे

कल हाँ तुम मैसेज रोशी प्रोग्राम से मैसेज जरूर से मिली जी आओ देने लो बल दाचे गर्मी तो डेरा जियो ता सख्त गर्मी दो आओ बिल्कुल बाहर ता बिल्कुल हम आवाज आई कचर तक बिल्कुल दचाज और रिचार भी करा नो बिया कसड़ाई लूट जी बाकी गैर जरूरी तक चिकन दे दा कोरोना ना दे बचार

हाँ जी सही राशि के भी छे प्रोग्राम पर स्टार्ट किया सॉन्ग तरफ तजी ये सॉन्ग वर भी जो है ना बाद बीआरसी प्रोग्राम से तो कॉल्स देने लव मैसेजेस दाए प्रोग्राम बिल्कुल है सभी प्रोग्राम के बिल्कुल से मिले भी

हाँ जी बिल्कुल डाटा पेज कुम दे ओर वही वजह बंदे डाटा पेज हाँ अच्छा जी बिल्कुल दासी के बीच काल तरफ तरसी प्रोग्राम से कॉल से मिली भी और 0927291291 कैसी जी काल बने सो को दिखियम दे नरसी के ना

छोटा कॉल करे डेरा डेरा मना नहीं कॉल के बोले और गांव से देखो लोग हाजी मैसेज कर दे इट्स मी यतीम लड़की तारिक भाई मलिक का बहुत शुक्रिया कि उसने इतने प्यारे से इतने प्यार से बुलाया मुझे मुझे तो घर वाले भी इतने प्यार से नहीं बुलाते और तारिक भाई ने और तारिक भाई मैंने आपसे कहा था कि हम चार सिस्टर एक लड़की यानी भतीजा है भतीजा नहीं ऑल से कहूं कि मेरे भतीजे का नाम आयशा है कैसा नाम है प्लीज दुआ में याद रखना डेरा मना ना थैंक यू यतीम लड़की मैसेज को बोले डेरा डेरा मना ना बिल्कुल सर इस हर प्रोग्राम के मुद्दे तबील भी करा बिल्कुल तो यतीम ने बिल्कुल मीर जिस तरह डेरा मना ना और दिन लो बच्चे

ज्यादा गर्मी है और घर से बेवजह ना निकलो तोरबुश। मैं हूं मासूम लड़की डॉक्टर इजहान फ्रॉम करक डेरा मनाना। थैंक यू मैसेज के वाले प्रचार हद तो बिल्कुल चाहिए सड़ाई नजीक है ना। हाँ जी बिल्कुल संदरा मुझे बड़ा बता लगा ना नो जो दा संदरा दुमरा कफी हुआ तो जावा सर तो ये कहना छे संदरा मो वर वेदला नो दा संदरा दुमरा कफी हो शा।

हाँ जी बिल्कुल, टाइम हम रखाम दाई और बिल्कुल मैसेज करे दाई। इट्स मी यतीम लड़की ऑल सिस्टर से कहूँ कि मैं सिर्फ संडे बाय संडे मैसेज करूंगी, बाकी ऑल शो साइलेंट सुनती हूँ। और तारिक से दुआ करे कि मेरा जॉब लग जाए, क्योंकि हर बार मैं इंटरव्यू में रह जाती हूँ, जॉब मेहनत पर नहीं सिफारिश पर मिलती है जो मेरे पास नहीं। और सिस्टर को सलाम, मैं दुआ की रिक्वेस्ट, मेरी दुआ की रिक्वेस्ट है।

फिर हमारा नाम रहा चेक नेक्स्ट तरहान भी मैसेज खड़े दाए यतीम लड़की से कहूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तरहान जैसे आंटी आपके साथ हैं और उसकी दुआ भी यतीम लड़की से कहूं कि क्या मैं आपको नेम बता दूं वहीं रख देना यतीम लड़की नेम नहीं। अच्छा जी डेरा मरना थैंक यू मैसेज के बोले ब्या तरह मैसेज करते हो डेरा मरना क्यों। अच्छा जी डेरा मरना थैंक यू नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम वेलकम तारिक वजीर शो साइलेंट सुनती थी बट बिजी थी और मेरे साथ आप ही जान भी शो सुन रही हैं वेलकम करो आप ही क्यों। अच्छा जी शो दरअसल वोर वी के ना नो अभी तहा प्रोग्राम से हर गले डेरा मनाना के वी चे शो वोर वी और ग्रेट मोन को दिल से वेलकम और हाँ

और यतीम लड़की यानी मोन आप अकेले नहीं हैं, मैं आपकी बहन हो, मेरी स्पेशल दुआ आपके साथ है, मैं ग्रेड मलिका डेरा मनना। थैंक यू मैसेज के बोले डेरा डेरा मनना जी वाह जार बीजेम ना दी कुर्बान समा एंड चफा।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: किए गए भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फिजाई हदूद के इस्तेमाल की पाबंदी 24 अगस्त 2024 तक बरकरार रहेगी। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा का इसहाक़ डार से हंगामी राब्ता, क़याम अमन के लिए MOUs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद MOUs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील कर दी। पेट्रोलियम बम गिरा दिया गया, आवाम पर मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं, शफी जान। हाइपर पख्तूनख्वा के तर्जमान शफी जान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत ने अपनी मुआशी नाकामियों का बोझ आवाम पर डाल दिया है, आवाम पर मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी फौज का ओदन में ईरानी मिजाइल हमलों में अपने दो फौजियों की हलाकत और मुतादद के जख्मी होने का एतराफ कर लिया। अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ओदन में ईरान के बैलिस्टिक मिजाइल हमलों में अपने दो फौजियों की हलाकत और मुतादद के जख्मी होने का एतराफ किया है। अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा, ईरानी सुप्रीम लीडर। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा हमनई ने कहा है कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। ये थी इस वक्त की अहम हेडलाइंस। न्यूज फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अब मुझे अगले हेडलाइन तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: रेडियो अमन नेटवर्क, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: करेगी।
1: दो नौ और विधि के प्रोग्राम से काला रहूंगी 09272102। ये क्या ना सही है, सही है, सही है क्या ना स्वीट हार्ट डेर जो तमाना शुक्रिया यो जहान मना वो चीट्स में यतीम लड़की वैसे यतीम लड़की सही है, यतीम लड़की सही है क्या ना वैसे सलाम जी भाई सलाम तो तरखान रोशी खान अरबिया नादिया और मनाइल उजाला होरेन गुलशन उदय यो किम फार्मेसी किम ने क्या ना दा मुदर तो ने खत्म कर सही दो दा मुदर तो ने खत्म कर दा दा किम ने क्या ना दो दो दा दा क्या फार्मेस ना कल के दयो सलाम दे किम कराई क्या ना दा मुदर तो ने खत्म कर सही दो सही दो मनाना मनाना मनाना विचिर्स में सदा बाफराम के

0: नर तगुरु ने सही तो वैसे रखी फाटक कल आजकल बहुत नुकसान हो रहा है वक्त हाथों से और लोग दिलों से निकालते जा रहे हैं वह जबरदस्त सदम वा फ्रॉम कर्क हेलो एंड हाय नाइस ब्रदर हाउ आर यू आई लाइक योर शो स्पेशल सलाम टू लॉर्ड लिजिमल रोशी खान फातिमा जरसन नदीबार मासिब और शहजादी ओके गुड लाइफ तमन्ना यू नाना यू जहान मनना
1: نظر کے سخت کرما
0: چی بالکل لکھے لی تھی

0: तड़ाई माशे में जी दार तो ये पता शापर सी देता शाय उखस्ती थी
1: जानाती से तारखे ना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर उखस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वाल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखे ना दा गिले वे हर वक्त मुतहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी वो स्टोल कुर वाला ना फसल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब उधर इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चे कपड़े सब यूशली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपई पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम।

0: आके जनाब वेलकम बैक यूजली व्यापो प्रोग्राम के शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से यूजलिबिया आरजे शाहिद खान तुसेता मुखातिब हर कले खुश आमदीद पखेरा लसरा तुसे लाइव कॉल सिलसिला जारी दो अरसे छे कॉल तरफ तर लुटशी और दिन के इंतजार कवि दा वक्त पे इंतजार सुखती छे खबर अतरे वीर सरा वकिया अस्सलाम वालेकुम जबरदस्त हर कला जी आमना वजीर टेलर फ्रॉम डुमेल ओके जी
1: अल्लाह
0: दे पेरा सवा
1: बस दाना मुझे

सो जना बिल्कुल ढेर माजरत गुणा और इधन की व्याई कहना चिराज भाई तो से चिदा से रोच है गाना हम यालेस की मुझे खबर हुआ है बजट देर है मंदे चिदा बिल्कुल जो प्रोग्राम तरह सो कले कले दास शी चे अचानक से तो बिल्कुल अचानक रोगलम पदे मुनि माजरत गुणा छे बिल्कुल और इधन की मुखबर खड़ी ने कहना चीजी रास के बजे इतवार बजे रोसी हो बस कले कले अचानक शीशा

सौ के जी चारों तो मैसेज वो को पहला बिल्कुल डेढ़ मैसेज द्रोगन सौ को अच्छे रसूल बस छाप लेगा और सौ को आएगा ना ये फयाज खान सांगो लगा और सौ को आई कहना छे मीना अच्छा सही तो टाइम गोरा के ना तो पहला मैसेज चारों गला वाह जी वाह मौत है पाता बोला किधर छावरी दून की तुम्हारा एक्टिव दी माशाल्लाह माशाल्लाह ओके जी मैसेज होता करे था जेड के सही था जेड के होता मैसेज करे था चेयर देना जी डोमेल ना आई थिंक तो से फर्स्ट टाइम मैसेज करा जेड के सही फर्स्ट मैसेज दो ही गलत है जी दा मैसेज रो गलत है जी 10:22 में ठीक है और नोरा मैसेज किम गानों वाले रोगली कहना बात की रोगली थी जी नो रतवेली थी कहना दास अंदर बोलो तो अपले के राज भाई छे अच्छे जची कला अच्छा इज अच्छी कला है ना वो हारमोनी ना वो मैं वक है ओके जी सही था जेड के जी बिल्कुल तो से फर्स्ट मैसेज डेढ़ मैसेज रोगली हो मोदा वेले उचे फर्स्ट मैसेज चार उसी अगर सांग हो तो अपले कहो जी बिल्कुल दगा सांग गोरा सर्च कहो जी ओके जी मिलाओ शो सही है कहना बिल्कुल दगा संदर चिदा और वो बिल्कुल जेड के तो से मैसेज फर्स्ट रो गला हो तो से हाँ टोल और उनका डाले भी बिल्कुल दगा संदर चिदा अगा और वो सर एंजॉय द ट्रैक जी बिल्कुल जरूर सर रेडियो मन कर अक्सर हो सह मोस्तरा हो सह जी

वही छे रंग में करार करार बदलेगी, यह रंग में करार करार बदलेगी। जुदाई असर दिजान करा कविना वेलकम बैक यो जली भी आठोला और इधन कुदा प्रोग्राम के हर गले सड़ी मच जी सुख में आवाज चेते चेते के और भी माओ खले टेंशन माओ खले डुलने बहुत अब लेके टेंशन माओ खले लश्की बैठ रो तवक है जी और काल वाला मलगरी लश्की बैठ रो तवक है अनन पहला एसएमएस जी सो एसएमएस शामिल लवाऊं भाई जी आयशा फ्राम कर प्लीज प्ले फरहान गोल्टा पे बिल्कुल तो से मैसेजर वक्ती शवेदा ओके जी तो से खरो बैठ रो तवक है। नेक्स्ट भाई जी रकीब हटक आजकल बहुत नुकसान हो रहे है वक्त हाथों से और लोग दिलों से निकलते जा रहे हैं। वाह जी रकीबो वेलकम टू द शो रकीब सरंगे शे बरोबार टिकटॉक के द मैसेज कॉल यू जहान मन्ना की मती खबर दिखा जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर मैसेज। नेक्स्ट रकीब हटक के द मालक सिंह जी जेल चौक न जी वेलकम वेलकम टू द शो राज भाई थैंक यू सो वेरी मच अ लॉट ऑफ थैंक्स एंड वेलकम टू यू। वाह जी रकीब हटक के द मालक सिंह जी ना जेल चौक न जी वेलकम टू द शो माई स्वीट ब्रदर राज भाई उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल अल्लाह पाक का शुक्र करम लाख लाख शिकड़ी जी खाओ दे तो से दो गाने सब को ठीक ठाक है मिल रहा है जी तब वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हुआ वोज बोलो सरा वो जी।

त्याकडे दे मेसेज कडे वायची. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम राज भाई, संगे ये अनिल यम और अगजेना प्रोग्राम आवरमा समूह कुले दे राज भाई पता दा. अच्छे पता है देखा ना वायची वायची प्रोग्राम दे डेर कुले दे यो जहान मनना अनिल. थैंक यू सो वेरी मच और अगजेना बिल्कुल प्रोग्राम और वे सुमरहा और अगजेना दी और अगजे तो प्रोग्राम के वेलकम हर कहले जी रेणियो मन करके हर कहले मैसेज कबोलो यो जहान मनना अनिल अफरामा और अगजे.

ओके जी, नेक्स्ट मैसेज वाई करना छे। सलाम, कैसे हो मेरे मेरे भाई राजू भाई? ओके छे, आप क्यूट हो तो आपकी बातें भी बहुत मीठी है। आई एम विरहान जी। वालेकुम सलाम विरहान, थैंक यू सो वेरी मच। जी बिल्कुल, तुझे ठोल चलेंगे ना सोमरा रिजुन की, बिल्कुल क्यूट थी, स्वीट थी, बिल्कुल जी। यो जहान मानना दे मैसेज का बोलो। नेक्स्ट भाई जी फारूक एफएफसी वाला राज भाई हैदर अफरीदी ता में सलाम वर्क जी हैदर अफरीदी बिल्कुल दे फारूक भाई एफएफसी वाला।